0: ते कलाई तो लोको से चुराने पलो यो अरे पाने दो नगाले लेते के पाने सगळे सुन लगे कर लो पछो तो तू ना सुमका बच्चा से गप दी बिसन कमाईलांग कलाई से चुराने या Dega buruk bisa sekaking, sampai dega tuluk satun.
1: Makan tuh kita sesekan, dari, maling kita dari.
0: Oh,